एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

शाम रोक लई रोक लई रोक लई ठाई शाम रोक लई और चक मुख चूम लई मुख चूम लई मुख चूम लई सर से मोरी चुनरी गई गई गई सर से मोरी चुनरी गई सरक

भरी मटकी, दधकी भरी मटकी, दधकी भरी मटकी लई जात रही डगर बीच। आहट सुन, आहट सुन, आहट सुन, जियरा गयो धड़क धड़क

कसम तोड़ेंगे इसका गुरूर हम। खंभे जैसी खड़ी है लड़की है या छड़ी है, शोला है फुलझड़ी है पट्टा है।

0: छोड़ो मुझे, जीना नहीं चाहते क्या?
1: जीना तो चाहता हूँ लेकिन प्यार में।
0: तो फिर मरना चाहते होगे?
1: हाँ लेकिन वो भी प्यार में।
0: अच्छा।

0: खुल्ला प्यार हो यार अगर दिलदार हो, खुल्ला खुल्ला प्यार हो, नजरों में खेल हुआ दिलों का मेल हुआ, नजरों में खेल हुआ दिलों का मेल हुआ, बाहों में अजाना
1: गुलाई गुलाई गुलाई गुलाई गुलाई गुलाई गुलाई गुलाई गुलाई गुलाई गुलाई गुलाई गुलाई गुलाई गुलाई गुलाई गुलाई गुलाई गुलाई गुलाई गुलाई गुलाई गुलाई गुलाई गुलाई गुलाई गुलाई गुलाई गुलाई गुलाई गुलाई गुलाई गुलाई गुलाई गुलाई गुलाई गुलाई गुलाई गुलाई गुलाई गुलाई गुलाई गुलाई गुलाई गुलाई गुलाई गुलाई गुलाई गुलाई गुलाई गुलाई गुलाई गुलाई गुलाई गुलाई गुलाई गुलाई गुलाई गुलाई गुलाई गुलाई गुलाई गुलाई गुलाई गुलाई गुलाई गुलाई गुलाई गुलाई गुलाई गुलाई गुलाई गुलाई गुलाई गुलाई गुल

तेरी बेटी क्या चाहती है और तू उसे क्या दे रहा है। तू बाप है या मेरा व्यापारी है? ये तेरी बेटी है बेईमान, ये नोटों की कोई गड्डी नहीं है जिसे तू सुधीर भाई के काले धंधों में लगाने की सोच रहा है। क्या बेटी के सुख की कोई अहमियत नहीं? जरा देख, ये दोनों एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। ये फूल से बच्चे तो सुधीर भाई को ललकार सकते हैं, एक तू है जो अपनी जान बचाए खड़ा है।

0: मुझे शर्म आती है।
1: देखो तुम नहीं कहोगी तो मेरी जान निकल जाएगी।
0: आई लव यू।
2: यह

0: देखो हाँ मायके नहीं तू मत मायके मायके मत जाइयो।
1: ए टोनी फर्नांडिस बेबी

0: तो देखने दो,
1: जल भी रहे हैं।
0: अरे तो चलने दो,
1: खुली सड़क है बाबा।
0: तो क्या हुआ भाई?
1: हाँ तो हो जाए
0: हो जाए।

0: अच्छा,
1: अरे हाँ वो चोर की शक्ल है गोरी।
0: तो क्या हुआ?
1: हो गया मिलना बहुत जरूरी।
0: चल पगली।

0: रहा है पसीना।
1: बाप रे,
0: कल मैंने देखी अजब हसीना। प्यार में उसके धड़के मेरा दिल चलता है सीना धक धक धक। बात वो आई बड़ी अदा से, बोली क्यों हो खफा खफा से।
1: हाय मर जाऊं,
0: हम भी थे एक नजर के प्यासे।
1: क्यों नहीं,
0: दिल पे उसने जो हाथ रखा आ गया आराम।

0: शादी का इरादा है,
1: शादी और तुमसे,
0: शादी का इरादा है।
1: शादी ना बाबा ना,
0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: बाय बाय।
0: सुनो तो, सुनो तो,

0: जरा आप मुस्कुराई, पहले जरा आप मुस्कुराई,
1: पहले जरा आप मुस्कुराई।

0: साहब।
1: कौन? मैं?
0: जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। यहाँ आएंगे आप? क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता।
0: लवली नेम।
1: थैंक यू।
0: गाएंगे आप मेरे साथ?
1: ना, डर लगता है।
0: डरने की क्या बात है, मैं आपके साथ गाता हूँ।

दोनों हमारे साथ गा सकते हैं तो आप सब क्यों नहीं गा सकते? रेडी यस 1 2 3 4 ला ला ला ला ला ला ला बस बस बस बस बस बस बहुत हो गया बहुत हो गया बहुत हो गया. म्यूजिशियंस आप लोग मत बजाइए. रेडी 1 2 3 4